सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM। अब सुनिए ओलिव का जबरदस्त है।

वीक, फिर भी जहाँ से गुजरूं हर बंदी के मुंह से निकले चीख। हाथ पकड़ पर दिल न लगा, जो कहती है करके दिखा, सुनने में आया है तू मरती है हम पे, मर के दिखा।

number one radio station, Radio Olive 106.3 FM, Jio Bindas. अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है।

0: हैप्पीनेस बांटोगे तभी तो बढ़ेगी,
1: क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी। जियो बिंदास।

0: हैप्पीनेस बांटोगे तभी तो बढ़ेगी,
1: क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास।
2: Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.

0: हैप्पीनेस फ्री में बट रही है, जितनी चाहो उतनी बटोर लो, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास।
1: हाय एवरीवन, मैं हूं अरमान मलिक।
2: अरमान मलिक
3: नंबर
2: 106.3 एफएम रेडियो ऑलिव, जियो बिंदास।
4: ऑलिव सुनो रेडियो नेटवर्क, कतर्स नंबर 1 एशियन रेडियो नेटवर्क।

अच्छी एक छोटी सी मुस्कुराहट किसी का दिन बना सकती है. सो स्प्रेड दी हैप्पीनेस, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस. रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी. जियो बिंदास.

रेडियो ऑलिव योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी। अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त हिट।

कभी खुद के कंधे पर हाथ रखकर कहा है कि क्या काम किया छोड़े तूने? जनाब, खुद से हैप्पी रहोगे तभी तो हैप्पीनेस फैलाओगे, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी। जियो बिंदास।

सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।

गानों के साथ या हैप्पीनेस बढ़ रही है, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी। जियो बिंदास।

गानों के साथ या हैप्पीनेस बढ़ रही है, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी। जियो बिंदास।

0: हैप्पीनेस फ्री में बट रही है, जितनी चाहो उतनी बटोर लो, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास।
1: हेलो लिसनर्स, मेरा नाम है राजपाल यादव, राजपाल यादव, और आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन हिंदी रेडियो स्टेशन रेडियो ऑलिव 106.3 FM, जियो बिंदास।
2: ऑलिव सुनो रेडियो नेटवर्क, कतर्स नंबर वन एशियन रेडियो नेटवर्क।

0: आपसी एक छोटी सी मुस्कुराहट किसी का दिन बना सकती है. सो स्प्रेड द हैप्पीनेस,
1: क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस. रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी. जियो बिंदास.

0: कभी खुद के कंधे पर हाथ रखकर कहा है कि क्या काम किया छोड़े तूने? जनाब, खुद से हैप्पी रहोगे तभी तो हैप्पीनेस फैलाओगे, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास।
1: Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.

0: सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास।
1: रेडियो ओलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर।
2: क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है कूल सॉन्ग।

0: गानों के साथ या हैप्पीनेस बढ़ रही है, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास। सोचो, अगर सेविंग से आप बन जाओ मिलियनेयर, कमर्शियल बैंक के सेव एंड विन कैंपेन में भाग लीजिए।
1: हर 10,000 कतरी रियाल सेविंग ग्रोथ पे मिलेगा एक कूपन, या सिर्फ 50% सैलरी सेव करो एंड एंटर द ड्रॉ।
0: न्यू कस्टमर हो तो अकाउंट खोलो और फर्स्ट सैलरी ट्रांसफर पे गारंटीड चांस टू विन,
1: और 9 महीने की कंसिस्टेंट सैलरी ट्रांसफर के साथ मेगा ड्रॉ में एंट्री पक्की।
0: तो फिर सोचना क्या, अगले मिलियनेयर आप हो सकते हो। आज ही शुरू करो सेविंग्स, कमर्शियल बैंक, सेव and win.

0: हैप्पीनेस बांटोगे तभी तो बढ़ेगी,
1: क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास।
2: हाय एवरीवन, मैं हूं अरमान मलिक, 106.3 FM रेडियो ऑलिव, जियो बिंदास।

हैप्पीनेस फ्री में बट रही है, जितनी चाहो उतनी बटोर लो, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी। जियो बिंदास।

0: की एक छोटी सी मुस्कुराहट किसी का दिन बना सकती है. सो स्प्रेड द हैप्पीनेस,
1: क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस. रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी. जियो बिंदास.
2: कमर्शियल बैंक प्रेजेंट्स सीबी 2026 मिलियन रियाल्स ड्रीम.
3: अब सिर्फ सेविंग्स नहीं, सपने ग्रो होंगे. जीतिए पूरे 5 मिलियन रियाल्स कैश प्राइजेस.
2: जीतने के चार रास्ते. पहला, अपना अकाउंट बैलेंस बढ़ाइए. हर 10,000 रियाल्स ग्रोथ पर पाइए एक कूपन.
3: दूसरा, अगर सैलरी 4,000 प्लस है या 50% सेव किया है तो आप एलिजिबल है.
2: तीसरा, नए कस्टमर्स को पहली सैलरी या 10,000 फंडिंग पर गारंटीड कूपन. और चौथा, 9 महीने रेगुलर सैलरी पर पाइए एक एक्स्ट्रा कूपन और मेगा ड्रॉ टिकट.

0: कभी खुद के कंधे पर हाथ रखकर कहा है कि क्या काम किया छोटे तूने? जनाब, खुद से हैप्पी रहोगे तभी तो हैप्पीनेस फैलाओगे,
1: क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास।
2: Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.
3: सलाम, प्रणाम, नमस्कार, वणक्कम, मैं हूँ जैकी श्रॉफ। रेडियो 106.3 जियो बिंदास।
4: ऑलिव सुनो रेडियो नेटवर्क, कतर्स नंबर वन एशियन रेडियो नेटवर्क।

हैप्पीनेस फ्री में बट रही है, जितनी चाहो उतनी बटोर लो, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी। जियो बिंदास।

0: आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 एफएम
1: बिंदास
2: रेडियो ओलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द

0: आपकी एक छोटी सी मुस्कुराहट किसी का दिन बना सकती है. सो स्प्रेड द हैप्पीनेस, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस. रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी. जियो बिंदास.
1: सोचो अगर सेविंग से आप बन जाओ मिलियनेयर, कमर्शियल बैंक के सेव एंड विन कैंपेन में भाग लीजिए.
2: हर 10,000 कतरी रियाल सेविंग ग्रोथ पे मिलेगा एक कूपन, या सिर्फ 50% सैलरी सेव करो एंड एंटर द ड्रॉ.
1: न्यू कस्टमर हो तो अकाउंट खोलो और फर्स्ट सैलरी ट्रांसफर पे गारंटीड चांस टू विन,
2: और 9 महीने की कंसिस्टेंट सैलरी ट्रांसफर के साथ मेगा ड्रॉ में एंट्री पक्की.
1: तो फिर सोचना क्या, अगले मिलियनेयर आप हो सकते हो. आज ही शुरू करो सेविंग्स. कमर्शियल बैंक, सेव and win.
3: Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.

0: कभी खुद के कंधे पर हाथ रखकर कहा है कि क्या काम किया छोड़े तूने? जनाब, खुद से हैप्पी रहोगे तभी तो हैप्पीनेस फैलाओगे,
1: क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास।
2: सलाम, प्रणाम, नमस्कार, वणक्कम, मैं हूं जैकी श्रॉफ। रेडियो ऑलिव, बोलो।

गानों के साथ या हैप्पीनेस बढ़ रही है, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी। जियो बिंदास।

0: हैप्पीनेस बांटोगे तभी तो बढ़ेगी,
1: क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास।
2: कमर्शियल बैंक प्रेजेंट्स सीबी 2026 मिलियन रियाल्स ड्रीम।
3: अब सिर्फ सेविंग्स नहीं, सपने ग्रो होंगे। जीतिए पूरे 5 मिलियन रियाल्स कैश प्राइजेस।
2: जीतने के चार रास्ते। पहला, अपना अकाउंट बैलेंस बढ़ाइए, हर 10,000 रियाल्स ग्रोथ पर पाइए एक कूपन।
3: दूसरा, अगर सैलरी 4,000 प्लस है या 50% सेव किया है तो आप एलिजिबल है।
2: तीसरा, नए कस्टमर्स को पहली सैलरी या 10,000 फंडिंग पर गारंटीड कूपन। और चौथा, 9 महीने रेगुलर सैलरी पर पाइए एक एक्स्ट्रा कूपन और मेगा ड्रॉ टिकट।
4: Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.

0: हैप्पीनेस फ्री में बट रही है, जितनी चाहो उतनी बटोर लो, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास।
1: हेलो नमस्कार, मम्मा मिया, मैं हूँ चंकी पांडे और आप सुन रहे हो मुझे रेडियो ऑलिव।

0: आपकी एक छोटी सी मुस्कुराहट किसी का दिन बना सकती है. सो स्प्रेड द हैप्पीनेस,
1: क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस. रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी. जियो बिंदास.

कभी खुद के कंधे पर हाथ रखकर कहा है कि क्या काम किया छोटे तूने? जनाब, खुद से हैप्पी रहोगे तभी तो हैप्पीनेस फैलाओगे, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी। जियो बिंदास।

0: आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।
1: रेडियो ओलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर।
2: क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है
3: कूल सॉन्ग।

0: गानों के साथ या हैप्पीनेस बढ़ रही है, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी। जियो बिंदास।
1: Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.

0: हैप्पीनेस फ्री में बट रही है, जितनी चाहो उतनी बटोर लो, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास।
1: This is
2: Vani Bhanushali.
3: Hey, this is
4: Iliana
3: D'Cruz.
5: This is me, Ritik Roshan.
6: Hi, I'm Alia Bhatt.
7: Hi, I'm Vivekanand Oberoi, and you're listening to Radio Olive, Jio Bindas.

0: आपकी एक छोटी सी मुस्कुराहट किसी का दिन बना सकती है. सो स्प्रेड द हैप्पीनेस,
1: क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस. रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी. जियो बिंदास.

रेडियो ऑलिव योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी। अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है।

0: कभी खुद के कंधे पर हाथ रखकर कहा है कि क्या काम किया छोड़े तूने? जनाब, खुद से हैप्पी रहोगे तभी तो हैप्पीनेस फैलाओगे, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास।
1: अ रिंग फॉर द न्यूली मैरिड, क्यूट लिटिल बैंगल फॉर द न्यूबॉर्न। अरे यार, हॉलिडे सीजन इज हियर, और फिर वही गिफ्टिंग का टेंशन। फिर मालबार गोल्ड एंड डायमंड्स गोल्डन समर के साथ आइए, फ्री कैश वाउचर्स ऑन डायमंड एंड प्रेशियस जेम ज्वेलरी परचेजेस, प्लस एक्सचेंज योर गोल्ड ज्वेलरी एंड अपग्रेड टू द लेटेस्ट डिजाइंस विदाउट एनी लॉस। और सुनो, देयर इज मोर। With the import duty revision in India, you can now save up to 15% on gold prices here in the GCC. Visit Malabar Gold and Diamonds today.
2: Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.

गानों के साथ या हैप्पीनेस बट रही है, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी। जियो बिंदास।

0: हैप्पीनेस बांटोगे तभी तो बढ़ेगी,
1: क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास।
2: हाय, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो ऑलिव पे।

हैप्पीनेस बांटोगे तभी तो बढ़ेगी, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी। जियो बिंदास।

0: थे।
1: बाकी सब ठीक बस चल रहा है,
0: बाकी सब ठीक
1: बस चल रहा है,
0: बाकी सब ठीक है ना,
1: बस चल रहा है भाई।
0: What about you?
2: हाँ चल रहा है,
0: बाकी सब ठीक
1: बस चल रहा है,
0: बाकी सब ठीक
2: बस चल रहा है,
0: बाकी सब ठीक है ना।
1: हाँ ठीक है।
0: और तेरा?

0: प्रो डायट चल रहा है,
1: बाकी सब ठीक
0: बस चल रहा है,
1: बाकी सब ठीक
0: बस चल रहा है,
1: तेरा भी बोलना
0: मेरा भी चल रहा है, व्हाट अबाउट यू?
1: हाय लेट के दू गया।

0: बाकी सब ठीक
1: बस चल रहा है।
0: बाकी सब ठीक
1: बस चल रहा है।
0: तेरा भी बोलना
1: मेरा भी चल रहा है।
0: व्हाट अबाउट यू?
1: हाय।

0: हैप्पीनेस फ्री में बट रही है, जितनी चाहो उतनी बटोर लो, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास।
1: सोचो अगर सेविंग से आप बन जाओ मिलियनेयर, कमर्शियल बैंक के सेव एंड विन कैंपेन में भाग लीजिए।
2: हर 10,000 कतरी रियाल सेविंग ग्रोथ पे मिलेगा एक

0: आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।
1: रेडियो ओलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द

0: कभी खुद के कंधे पर हाथ रखकर कहा है कि क्या काम किया छोटे तूने? जनाब, खुद से हैप्पी रहोगे तभी तो हैप्पीनेस फैलाओगे, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास।
1: इस वेकेशन प्यार से हमारा इंतजार करने वाले अपनों को एक गोल्डन सरप्राइज क्यों ना दे। मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स के गोल्डन समर ऑफर के साथ डायमंड एंड प्रेशियस जेम ज्वेलरी खरीदने पर पाइए फ्री कैश वाउचर्स। अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी को एक्सचेंज कीजिए विदाउट एनी लॉस। और अब विद द इंपोर्ट ड्यूटी रिविजन इन इंडिया, यू कैन नाउ सेव अप टू 15% ऑन गोल्ड प्राइसेस हियर इन जीसीसी। विजिट मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स टुडे।
2: सत श्री अकाल जी, मैं हां हरभजन मान और तुसी सुन रहे हो कतर दा नंबर 1 हिंदी रेडियो स्टेशन रेडियो ऑल ऑफ 106.3 FM जियो बिंदास।
3: आप सुन रहे हैं रेडियो ऑलिव 106.3 FM जियो बिंदास।

0: गानों के साथ या हैप्पीनेस बट रही है,
1: क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी। जियो बिंदास।

आपकी एक छोटी सी मुस्कुराहट किसी का दिन बना सकती है. सो स्प्रेड द हैप्पीनेस, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस. रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी. जियो बिंदास.

0: कभी खुद के कंधे पर हाथ रखकर कहा है कि क्या काम किया छोटे तूने? जनाब, खुद से हैप्पी रहोगे तभी तो हैप्पीनेस फैलाओगे, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी। जियो बिंदास।
1: Fresh fish on the grill, slow cooked mandi, perfectly spiced prawns, and that special chutney. No noise, no drama. Just seafood done right. BBQ fish, crabs, prawns, crafted with patience. Serve with pride. Danatal Bahar, the ultimate Qatari adventure. Souq Waqif, Al Khor.
2: Hi everyone, this is Benny Dayal here. Olive Radio 106.3. Jiyo Bindas.
3: Olive Suno Radio Network. Qatar's number one Asian radio.

गानों के साथ या हैप्पीनेस बट रही है, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी। जियो बिंदास।

देखो इस दुनिया में कितने सारे टॉपिक हैं जिन पर हम बात कर सकते हैं, लेकिन वीकेंड को हमने चुना टेक्नोलॉजी के बारे में बात करने के लिए। जी कैसे हैं आप लोग, वीकेंड किस तरीके से जा रहा है आपका, ये मुझे बताइए 3311063 पर आकर। मैं हूँ आपकी कसुस, शो आपके लिए टेक टॉक लेकर आ गई, जहां पर हम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं लेकिन फन का तड़का मार के। सो आज जो है कौन कौन सी ऐसी खबरें हैं जिनमें मैं फन का तड़का मारूंगी, ये जानने के लिए आपको बस स्टे ट्यून्ड रहना पड़ेगा 106.3 रेडियो ऑलिव पर। आने के बाद बहुत सारी खबरें आपको बताऊंगी, बहुत सारे फैक्ट्स आपको बताऊंगी टेक्नोलॉजी के बारे में, लेकिन उससे पहले अमेजिंग वाले गाने जो है वो एंजॉय कर लीजिए। मैं हूं आपकी कसुस, स्टे ट्यून्ड रहिए और कहते रहिए जियो बिंदास।

0: वो पाट दे तुड़ा।
1: हैप्पीनेस बांटोगे तभी तो बढ़ेगी, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास।
2: अ रिंग फॉर द न्यूली मैरिड, क्यूट लिटिल बैंगल फॉर द न्यूबॉर्न।
3: अरे यार, हॉलीडे सीजन इज हियर और फिर वही गिफ्टिंग का टेंशन। तो फिर मालबार गोल्ड एंड डायमंड्स गोल्ड एंड समर के साथ आइए, फ्री कैश वाउचर्स ऑन डायमंड एंड प्रेशियस जेम ज्वेलरी परचेजेस, प्लस एक्सचेंज योर गोल्ड ज्वेलरी एंड अपग्रेड टू द लेटेस्ट डिजाइंस विदाउट एनी लॉस। और सुनो, देयर्स मोर। विद द इंपोर्ट ड्यूटी रिविजन इन इंडिया, यू कैन नाउ सेव अप टू 15% ऑन गोल्ड प्राइसेस हियर इन द GCC। विजिट मालबार गोल्ड एंड डायमंड्स टुडे।
4: Hi there friends, this is DJ Suketu. DJ Suketu. You're listening to Radio Olive 106.3 FM, Jio Jio Bindas.
5: Olive Suno Radio Network, Qatar's number one Asian radio network.
6: Radio Olive, I'm the number one.
7: J-E-C-H.

देखो इस दुनिया में कितने सारे टॉपिक है जिन पर हम बात कर सकते हैं, लेकिन वीकेंड को हमने चुना। लेकिन उससे पहले अमेजिंग वाले गाने जो है वो एंजॉय कर लीजिए। मैं हूँ आपकी कशो, स्टे ट्यून रहिए और कहते रहिए जियो बिंदास। देखिए आजकल हर अलग जनरेशन जो है वो अलग ऐप यूज कर रही है कम्युनिकेट करने के लिए। जैसे आजकल जो बीटा जनरेशन है वो स्नैपचैट पे बातें करती है, उससे पहले वाली जनरेशन यानी हमारी जनरेशन जो है जेन ज़ी जो है वो इंस्टाग्राम पे बातें करते हैं, और उससे पहले वाली जो जनरेशन है वो व्हाट्सएप पे बातें करते हैं, उससे पहले वाली बातें आपस में होती हैं फोन कॉल पे। वेलकम बैक जी, कैसे हैं आप लोग। देखिए मैं आपको बस इतना बताना चाहती हूँ कि वीकेंड पे जो है मम्मी पापा से बात करने को जब मैं फोन उठाती हूँ, मुझे समझ नहीं आता है कि इनको व्हाट्सएप पे कॉल लगाया जाए, गूगल मीट पे कॉल लगाया जाए या नॉर्मली कॉल लगा लिया जाए, क्योंकि व्हाट्सएप पे जो है ये अक्सर बिजी रहते हैं मैसेजेस फॉरवर्ड करने पे। सो मम्मी पापा जो है जो ऐप सबसे ज्यादा यूज करते हैं वो है व्हाट्सएप, और व्हाट्सएप इसी चक्कर में जो है अलग अलग फीचर्स लेकर आ रहा है, जिससे मम्मी पापा को जो गलत फहमियां हो जाती है ना अक्सर उनके बच्चों को लेकर, वो ना हो। सो व्हाट्सएप का एक नया डीप फेक डिटेक्टर फीचर जो है वो आया है, जिसमें सोशल मीडिया पर बढ़ते फेक वीडियो से लड़ने के लिए व्हाट्सएप ने ये नया फीचर टेस्टिंग जो है उस पर डाल दिया। अब ये कैसे काम करेगा, अगर आपको कोई फॉरवर्डेड वीडियो मिलती है तो आप जो है उसे जो है सस्पिशियस नजरों से अगर आप देख रहे हैं तो व्हाट्सएप के अंदर ही एक बटन होगा, उसे एआई टूल्स के जरिए जो है आप स्कैन कर सकते हैं और वो बताएगा आपको कि ये जो वीडियो है ये डीप फेक वाली वीडियो है या एआई जनरेटेड वीडियो है। लेकिन आप देखिए बच्चा पार्टी, अगर कोई गलत काम करते हुए आपकी वीडियो जो है वो आपकी मम्मी पापा के पास गई तो फिर आप ना ये नहीं कह पाएंगे कि मम्मी ये तो एआई से बनी हुई है, क्योंकि आप मम्मी पापा इतने स्मार्ट हो गए कि व्हाट्सएप पर ही चेक कर पाएंगे कि ये जो आपकी वीडियो है ये एआई वाली है या फिर ऐसे ही वाली है। मैं हूँ आपकी, मुलाकात होगी अमेजिंग वाले गाने के उस पार, स्टे ट्यून रहिए और कहते रहिए जियो बिंदास।

0: हैप्पीनेस बांटोगे तभी तो बढ़ेगी,
1: क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी। जियो बिंदास।
0: अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है।

यार पहले ऐसा होता था ना कि अगर किसी भी सवाल का जवाब आप अपने किसी दोस्त से पूछो या किसी रिश्तेदार से पूछो या फैमिली मेंबर से पूछो तो वो ये कहता था कि मैं गूगल थोड़ी हूँ जो मुझे हर बात का आंसर पता होगा। एंड कई बार ऐसी चीजें भी होती थी जो गूगल को खुद नहीं पता होती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, गूगल को सब कुछ पता होगा। हाँ जी, वेलकम बैक 106.3 रेडियो ऑलिव पर। मैं हूँ आपकी कशिश एंड शो आपके लिए लेकर आ गई हूँ टेक टॉक। अब देखिए, इस वीकेंड वाले शो में हम बात करते हैं टेक्नोलॉजी के बारे में, लेकिन मस्ती और फन का तड़का मार के। अब देखिए, गूगल ने भी जो है अपडेट का तड़का जो है वो मार दिया है अपने सर्च इंजन पे। हाँ जी, गूगल का सर्च जो है अब उसमें सबसे बड़ा चेंज हमें देखने को मिला है। गूगल ने अपने सर्च इंजन को लेकर अब तक का सबसे बड़ा अपडेट जो है उसका अनाउंसमेंट कर दिया। जेमिनी 3.5 फ्लैश डिफॉल्ट बन गया है। अब आप जब भी गूगल पे AI मोड यूज करेंगे ना, तो पीछे बैकग्राउंड में इनका सबसे नया और सुपर फास्ट जेमिनी 3.5 फ्लैश मॉडल जो है वो काम करने लग जाएगा। अब देखिए, री इमेजिंड अब देखिए, मेरे पास तो AI नहीं है ना, मेरे दिमाग में AI काश फिट हो जाता तो फिर मजा आ जाता। लेकिन री इमेजिंड सर्च बॉक्स जो है वो आपको इसमें देखने को मिलेगा, जिसमें पिछले 25 सालों में पहली बार गूगल का जो सर्च का पूरा बॉक्स है ना वो बदल दिया गया है। और ये सिर्फ कीवर्ड नहीं समझेगा, बल्कि पूरा का पूरा वीडियो, इमेज, फाइल या क्रोम टैब सब कुछ आप इसमें ड्रॉप कर सकते हैं और कॉम्प्लेक्स सवाल भी पूछ सकते हैं। सो AI से जो है अब एक नेचुरल कॉन्वर्जेशन जो है वो इजी हो जाएगी। सो देखिए, मतलब इन शॉर्ट, जेमिनी जो है वो और ज्यादा बढ़िया काम करने वाला है ना। अब आप और ज्यादा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस पूछ पाएंगे गूगल से और आपको सीधा सीधा जवाब मिलेगा, ऐसे गोल गोल घूम के नहीं मिलेगा। मैं हूं आपकी कशिश, मुलाकात होगी थोड़ी सी देर में, स्टे ट्यून्ड रहिए और कहते रहिए जियो बिंदास।

0: हैप्पीनेस फ्री में बट रही है, जितनी चाहो उतनी बटोर लो, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास।
1: Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.
2: TEC

आपने कभी रियलाइज किया है कि आपकी मम्मी पापा का जो फोन है वो कितना भारी हुआ करता था, लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी जो है वो अपडेट होती जा रही है, अपग्रेड होती जा रही है, वैसे वैसे हमारे फोन जो है वो लाइट होते जा रहे हैं, लेकिन उसमें डेटा स्टोरेज बढ़ता जा रहा है। हाँ जी, वेलकम बैक टेक टॉक वाले शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ आपकी कशिश 106.3 रेडियो ऑलिव पर। अब देखिए यार, ये हमारा टेक्नोलॉजी वाला शो जहाँ पे वीकेंड पर हम टेक्नोलॉजी के ऊपर बात करते हैं, लेकिन मस्ती मजा और फन का तड़का मार के। अब देखिए यार, मैं आपको बताने आ गई हूँ एक अमेजिंग वाला फैक्ट। तो देखिए, पहले जो है 5 MB का वजन जो है वो टन में होता था। हाँ, एक टन। और 1956 में IBM ने पहला कमर्शियल कंप्यूटर जो है उसका हार्ड ड्राइव जो है वो बनाया था, एंड उसका 5 MB डेटा स्टोरेज यूनिट का वजन 1000 kg यानी 1 टन से भी ज्यादा था। आज के स्मार्टफोन की 2 फोटोज भी इसमें जो है वो फिट नहीं हो सकती हैं। एग्जैक्टली। फिलहाल देखिए, अगर आपकी स्टोरेज में जगह नहीं है तो कुछ ऐसे लोगों की फोटोज जो आपके लिए मैटर नहीं करती, उन्हें फटाक से हटाइए और अपनी न्यू मेमोरीज के लिए जगह बनाइए। अब अगर समझने वाले समझ रहे हैं कि ये जो है सिर्फ फोटोज के बारे में नहीं है। मैं हूँ आपकी कशिश, मुलाकात होगी थोड़ी सी देर में। स्टे ट्यून रहिए और कहते रहिए जियो।

0: छोटी सी मुस्कुराहट किसी का दिन बना सकती है. सो स्प्रेड द हैप्पीनेस, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस. रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी. जियो बिंदास.
1: इस खेल में प्लेयर प्लेयर नहीं, वॉरियर कहलाते हैं. यहां हर गोल पे एड्रेनलिन रश हाई होता है. यहां हर चोट एक मेडल है. हारना मना है और डरना गुनाह है. यहां सेलिब्रेशन के लिए ढोल नहीं, दिलों की धड़कन शोर करती है. और ऑडियंस चीयर नहीं, रोर करती है. बिकॉज इट्स नॉट जस्ट अ गेम, इट्स एन इमोशन.

0: फीफा की हर डिटेल के लिए सुनिए रेडियो ऑलिव
1: इन एसोसिएशन विद
0: डाउनलोड द सिटी एक्सचेंज मोबाइल ऐप नाउ टू सेंड मनी क्विकली एट द बेस्ट एक्सचेंज रेट्स
2: ऑल्सो पाम स्विस गोल्ड बार्स आर नाउ अवेलेबल एट द बेस्ट प्राइस एट सिटी एक्सचेंज
0: योर ट्रस्टेड रेमिटेंस पार्टनर

देखो यार, अगर आपको मेरा ये टेक टॉक वाला शो अच्छा लग रहा है ना, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं डेली शो करती हूँ, डेली आपसे बातचीत करती हूँ। लाइफ मस्त है शो में 106.3 रेडियो ऑलिव पर सुबह 10 बजे से लेकर 1 बजे तक। लेकिन फिलहाल वीकेंड पर आ गई हूँ टेक्नोलॉजी की बात करने आपसे, फन का तड़का मार के। अब देखिए यार, मेरा नाम है आपकी कशिश एंड आपको जो है टेक्नोलॉजी के बारे में जो है ना बेसिक चीजें बताना, ये मेरा फर्ज बनता है। अब देखिए, लाइफ मस्त है शो में भी मैंने आपको ये वाली बात बताई थी, लेकिन जो लोग वहां नहीं सुन पाए उन्हें फिर से बता देती हूँ कि व्हाट्सएप जो है एक फीचर टेस्ट कर रहा है, जहां पर जैसे इंस्टाग्राम पे कोई ऑनलाइन होता है तो हमें एक ग्रीन कलर का डॉट दिखता है ना उनकी प्रोफाइल पिक्चर के पास, वैसा ही व्हाट्सएप पर भी होने लगेगा। हाँ, ऑनलाइन जो है अभी भी दिखता है, लेकिन अब जो है वो ग्रीन डॉट जो है वो भी आपको दिखेगा। एंड जिन लोगों को अपनी प्राइवेसी की ज्यादा चिंता है वो उसे बंद भी कर सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है ज्यादातर लोग इसे बंद ही करने वाले हैं, बिकॉज हम नहीं चाहते किसी को एकदम फ्लैश होके दिखे कि हम ऑनलाइन है, हम फोन चला रहे हैं। स्पेशली जो मेरी उम्र के बच्चे हैं, जो अपनी मम्मी पापा से ये बोलते हैं कि हम सोने जा रहे हैं एंड रात में जो है व्हाट्सएप स्क्रॉल करते रहते हैं, या फिर वो लड़के जो ये बोल रहे हैं कि गुड नाइट बेबी मैं सोने जा रहा हूं, और उसके बाद फिर ऑनलाइन रहते हैं। देखिए, कुछ करे ना करे ये वाले जो फीचर्स है व्हाट्सएप के, ये कलेश जरूर करवाएंगे। मैं हूँ आपकी कशिश, मुलाकात होगी थोड़ी सी देर में, स्टे ट्यून्ड रहिए और कहते रहिए जियो बिंदास।

0: खुद के कंधे पर हाथ रखकर कहा है कि क्या काम किया छोड़े तूने जनाब, खुद से हैप्पी रहोगे तभी तो हैप्पीनेस फैलाओगे, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास।
1: इस वेकेशन प्यार से हमारा इंतजार करने वाले अपनों को एक गोल्डन सरप्राइज क्यों ना दे। मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स के गोल्डन समर ऑफर के साथ डायमंड एंड प्रेशियस जेम ज्वेलरी खरीदने पर पाइए फ्री कैश वाउचर्स। अपने पुरानी गोल्ड ज्वेलरी को एक्सचेंज कीजिए विदाउट एनी लॉस। और अब विद द इंपोर्ट ड्यूटी रिविजन इन इंडिया, यू कैन नाउ सेव अप टू 15% ऑन गोल्ड प्राइसेस हियर इन जीसीसी। विजिट मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स टुडे।
2: हाय गाइस, दिस इज अबार शक्ति खुराना और आप मुझे सुन रहे हो रेडियो ऑलिव।
3: See you.

अगर इंस्टाग्राम पे आपका अकाउंट जो है वो पब्लिक है तो मेरी बात जरा ध्यान से सुनना। एंड जी वेलकम बैक 106.3 रेडियो ऑलिव पर, मैं हूँ आपकी कशिश एंड शो आपके लिए लेकर आ गई हूँ टिकटॉक, जहाँ पर हम टेक्नोलॉजी के बारे में बात करते हैं लेकिन फन का तड़का मार के। अब देखिए, मेटा ने एक नया एआई टूल जो है वो लॉन्च किया है जिसका नाम म्यूस इमेज है, और ये आपके इंस्टाग्राम अकाउंट अगर पब्लिक है तो भी अनजान इंसान को आपकी फोटोज को यूज करके एआई से नई इमेज बनाने में जो है हेल्प कर सकता है, और आपको पता भी नहीं चलेगा कि मेटा ने जो है सभी पब्लिक अकाउंट्स का ये जो फीचर है ये ऑटोमेटिकली ऑप्ट इन कर लिया, यानी अपने अंदर जो है वो शामिल कर लिया आपसे परमिशन लिए बिना। तो कोई भी यूजर जो है वो प्रॉम्प्ट में आपका यूजर नेम जो है वो टैग करके आपकी फोटो से एआई इमेज जो है वो जनरेट कर सकता है। तो इसका सबसे बड़ा खतरा यही है कि आपको इसकी कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आएगी। सो अगर आपको अपनी इमेजेस को एआई से जो है इस्तेमाल होने से बचाना है सो जल्दी से इस फीचर को जाके अपने इंस्टाग्राम पे डिसेबल कर दो। अकाउंट सेंटर पे आप जाएंगे तो वहां पर आपको इसकी सारी डिटेल्स जो है वो मिल जाएगी। मैं हूं आपकी कशिश, सतर्क रहिए, सावधान रहिए, और आपकी कशिश के साथ स्टे ट्यून्ड रहिए टेक टॉक पे। फिलहाल अमेजिंग गाने आ रहे हैं आपके रेडियो सेट्स पर, कहते रहिए जियो बिंदास।

0: गानों के साथ या हैप्पीनेस बढ़ रही है, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास। कमर्शियल बैंक प्रेजेंट्स सीबी 2026 मिलियन रियाल्स ड्रीम।
1: अब सिर्फ सेविंग्स नहीं, सपने ग्रो होंगे। जीतिए पूरे 5 मिलियन रियाल्स कैश प्राइजेस।
0: जीतने के चार रास्ते। पहला, अपना अकाउंट बैलेंस बढ़ाइए, हर 10,000 रियाल्स ग्रोथ पर पाइए एक कूपन।
1: दूसरा, अगर सैलरी 4,000 प्लस है या 50% सेव किया है तो आप एलिजिबल है।
0: तीसरा, नए कस्टमर्स को पहली सैलरी या 10,000 फंडिंग पर गारंटीड कूपन। और चौथा, 9 महीने रेगुलर सैलरी पर पाइए एक एक्स्ट्रा कूपन और मेगा ड्रॉ टिकट।
2: इस खेल में प्लेयर प्लेयर नहीं, वॉरियर कहलाते हैं। यहां हर गोल पे एड्रेनलिन रश हाई होता है। यहां हर चोट एक मेडल है। हारना मना है और डरना गुनाह है। यहाँ सेलिब्रेशन के लिए ढोल नहीं, दिलों की धड़कन शोर करती है। और ऑडियंस चीयर नहीं, रोर करती है। बिकॉज इट्स नॉट जस्ट अ गेम, इट्स एन इमोशन। FIFA की हर डिटेल के लिए सुनिए रेडियो ऑलिव
3: इन एसोसिएशन विद।
2: डाउनलोड द सिटी एक्सचेंज मोबाइल ऐप नाउ टू सेंड मनी क्विकली एट द बेस्ट एक्सचेंज रेट्स।
4: ऑल्सो पाम स्विस गोल्ड बार्स आर नाउ अवेलेबल एट द बेस्ट प्राइस एट सिटी एक्सचेंज,
2: योर ट्रस्टेड रेमिटेंस पार्टनर।
5: Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.
0: अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है।
6: जबरदस्त

तो देखिए, गूगल मैप्स यूज करते हुए या कोई भी फिजिकल मैप यूज करते हुए अगर आपको ऐसा लगे कि यार ये जगह तो हमने कभी नहीं सुनी या ये जगह तो असली में एग्जिस्ट ही नहीं करती, तो फिर आप जो है बिल्कुल सही दिशा में जा रहे हैं। वेलकम बैक 106.3 रेडियो ऑलिव पर, मैं हूँ आपकी कशिश एंड शो आपके लिए लेकर आ गई हूँ टेक टॉक, जहाँ पर हम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं लेकिन फन का, मस्ती का तड़का मार के। अब यूं तो मैप्स का जो है ये काम होता है कि आपको सही रास्ता दिखाए, आपको गुमराह ना करे, लेकिन मैप की कंपनीज जो है वो भी कुछ ऐसी हिडन चीजें हैं जो आपको भटकाने वाले काम जो है वो कर सकती है। अब देखिए यार, गूगल मैप्स और पुरानी मैप कंपनीज जो है अपने मैप्स में एक ट्रैप टाउन जो है यानी एक नकली शहर जो है वो जरूर से ऐड करती थी, क्योंकि अगर कोई दूसरी कंपनी उनका मैप कॉपी करने की कोशिश करे तो ये जो नकली शहर है ये पकड़ा जाए, जिससे कॉपीराइट चोरी जो है वो प्रूव हो सके। तो देखिए, ये माइंड गेम खेला है इन्होंने कॉपीराइट को बचाने के लिए, लेकिन हो सकता है कि आपको ये जो है ना थोड़ा सा भटका दे। मैं हूँ आपकी कशिश, मुलाकात होगी थोड़ी सी देर में, स्टे ट्यून्ड रहिए और कहते रहिए जियो बिंदास।

0: हैप्पीनेस फ्री में बट रही है, जितनी चाहो उतनी बटोर लो, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास।
1: G-E-C-A

और मेरा जो क्लीग है ना वो कल ऐसे ही नीचे सुपरमार्केट तक गए थे, हमारे ऑफिस के नीचे एक सुपरमार्केट है, एंड वहां से जो है चॉकलेट बिस्किट्स ये लेते लेते पता नहीं मेरे कलीग को क्या हुआ और उसने एक कीपैड फोन ले लिया। अंजी वेलकम बैक 106.3 रेडियो ऑलिफ पर, मैं हूँ आपकी कशिश और आप मेरे साथ टेक टॉक शो एंजॉय कर रहे थे अभी तक, जहां पर हम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं लेकिन मस्ती मजा और फन का तड़का मार के। अब देखिए यार, ये जो मेरे कलीग हैं इन्होंने एक बटन वाला फोन यानी कीपैड वाला फोन ले लिया जिसमें कैमरा भी नहीं है, जिसमें दो सिम लग सकती है, जो बहुत लाइट वेट है, जिसे कितना भी तोड़ो फोड़ो फेंको कुछ नहीं हो रहा है। एंड सच में मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं जो है 2003 में पैदा हुई हूँ एंड उसके बाद जब मैंने अपना पहला फोन यूज किया था वो कीपैड था, लेकिन उस कीपैड में टच स्क्रीन था। सो मेरे लिए वो जो फोन लेकर आए हैं वो बहुत ही एक अलग सा एक्सपीरियंस है। सो मैंने ट्राई किया है कि एक दिन ऐसा मैं चैलेंज जरूर करूंगी जिसमें अपनी सिम कार्ड उस वाले फोन में डालकर एंड अपनी सोशल मीडिया को पूरी तरीके से कट ऑफ कर दूंगी। क्या आप ऐसा करना चाहेंगे? 3311063 पर मुझे जरूर बताइएगा, इंस्टाग्राम पर भी आकर आप बता सकते हैं। फिलहाल मैं यहाँ से चलती हूँ, लेती हूँ आपसे विदा, कल मुलाकात होगी लाइफ मस्त है शो में 10 से 1। आप स्टे ट्यून रहिए, अमेजिंग गाने एंजॉय करते रहिए और आपकी कशिश के साथ कहते रहिए जियो बिंदास टाटा बाय बाय हैप्पी वीकेंड।

हाय, गुड इवनिंग। यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल 106.3 एफएम। मैं हूँ मुस्कान और ये है हैप्पी वीकेंड्स। सो बेसिकली वीकेंड जो है उसको स्पेशल बनाने के लिए रेडियो ऑलिव पर मुस्कान आ चुकी है। वैसे आपने कभी नोटिस किया है कि थर्सडे रात के बाद से कतर का जो मूड है वो एकदम चेंज हो जाता है। कल तक जो लोग ऑफिस के मेल्स का रिप्लाई दे रहे थे, आज वही लोग गूगल पर सर्च कर रहे हैं कि भाई बेस्ट ब्रेकफास्ट कहाँ मिलेगा, यू नो आपके आसपास कौन कौन से वीकेंड प्लान्स हैं जो दोहा में किए जा सकते हैं। सो वीकेंड ना सिर्फ दो दिन का ब्रेक नहीं होता, ये एक रिमाइंडर होता है कि लाइफ सिर्फ डेडलाइंस का नाम तो बिल्कुल नहीं है। किसी के लिए ये फैमिली टाइम है, किसी के लिए फुटबॉल का टाइम है, और किसी के लिए नेटफ्लिक्स, और किसी के लिए बस थोड़ी सी एक्स्ट्रा नींद, जैसे कि मैं। और ऑनेस्टली हर वीकेंड ना परफेक्ट होना जरूरी नहीं होता। कभी एक कप कड़क चाय, अच्छी कॉन्वर्सेशन भी पूरे वीकेंड को स्पेशल बना देती है। और मैंने ये खुद अपने तरीके से करके देखा ऐसे। सो आज अगले 3 घंटे हम बात करेंगे कतर की, दुनिया की, बॉलीवुड की और थोड़ी सी जिंदगी की भी। और शुरुआत एक सिंपल से सवाल से कि अगले अगर मैं बात करूँ आपकी एक्टिविटी की, जैसे आज फ्राइडे की शाम हो चुकी है, सो आपके वीकेंड की जो पहली एक्टिविटी होती है ऑफिशियल, वो क्या होती है? थोड़ा ज़्यादा सोना, ब्रेकफास्ट अच्छा बनाना, या फिर लॉन्ग ड्राइव पर जाना, या सीधे कोई एप्लीकेशन खोल के अपने लिए खाना ऑर्डर करना? व्हाट्सएप का नंबर है 3311063। मुस्कान है आपके साथ और शुरू करते हैं हैप्पी वीकेंड।

0: खुद के कंधे पर हाथ रखकर कहा है कि क्या काम किया छोटे तूने जनाब, खुद से हैप्पी रहोगे तभी तो हैप्पीनेस फैलाओगे, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास।
1: अ रिंग फॉर द न्यूली मैरिड, क्यूट लिटिल बैंगल फॉर द न्यूबॉर्न। अरे यार, हॉलिडे सीजन इज हियर और फिर वही गिफ्टिंग का टेंशन। फिर मालबार गोल्ड एंड डायमंड्स गोल्ड एंड समर के साथ पाइए फ्री कैश वाउचर्स ऑन डायमंड एंड प्रेशियस जेम ज्वेलरी परचेजेस, प्लस एक्सचेंज योर गोल्ड ज्वेलरी एंड अपग्रेड टू द लेटेस्ट डिजाइंस विदाउट एनी लॉस। और सुनो, देयर इज मोर। With the import duty revision in India, you can now save up to 15% on gold prices here in the GCC. Visit Malabar Gold and Diamonds today.
2: Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.

सो हमारे बचपन की सबसे बड़ी लग्जरी क्या होती है? कभी किसी बच्चे को देखा है उसे महंगे टॉय या फिर कार्डबोर्ड को यू नो यूज करते हुए? वो अक्सर कार्डबोर्ड से ही अपना स्पेसशिप बना लेता है, राइट? क्यों? क्योंकि बचपन में इमेजिनेशन से सब कुछ चल जाता है, बजट से नहीं। इसीलिए मुझे कतर में चल रहे समर एक्टिविटी प्रोग्राम्स बहुत ज्यादा पसंद है। सो यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल ऑफ 106.3 एफएम। मैं हूं मुस्कान और शो का नाम है हैप्पी वीकेंड्स। सो यहां पर एक प्राइवेट होटल मतलब है रेडिसन ब्लू, जहां पर थर्सडे और फ्राइडे को बच्चों के लिए फ्री में एक्टिविटीज होती हैं। सो मुझे जैसे ही पता चला, मुझे लगा कि भाई आपको बताती हूँ, जहाँ पर आर्ट्स, क्राफ्ट्स, गेम्स, ग्रुप एक्टिविटीज सब कुछ अच्छे से चल रहा है और यहाँ बच्चे सिर्फ बिजी नहीं होते, क्रिएटिव हो जाते हैं। सो मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं बच्चों के बारे में पढ़ती हूँ या बच्चों को अपने आसपास देखती हूँ, तो चाइल्डहुड की स्ट्रांगेस्ट मेमोरी ना खिलौने नहीं होते, एक्सपीरियंसेस होते। हो सकता है कि बच्चा बाद में बड़ा होकर ड्राइंग भूल जाए, लेकिन उस ड्राइंग कंपटीशन की खुशी ना वो कभी नहीं भूलेगा। तो अगर घर में छोटे सुपर हीरोज हैं और इस वीकेंड उनके साथ थोड़ा सा टाइम निकालिए, और अगर आप जा सकते हैं तो बाहर उन्हें ज़रूर लेके जाइए, मेमोरी बनाइए। क्रिकेट हो, साइकिलिंग हो, हाइड एंड सीक हो, या फिर जो भी उन्हें खेलना पसंद है, उनके साथ थोड़ा टाइम बिताइए। सुन रहे हैं आप रेडियो ऑलिव, मैं हूँ मुस्कान और ये है हैप्पी वीकेंड्स।

0: गानों के साथ या हैप्पीनेस बढ़ रही है,
1: क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी। जियो बिंदास।

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدنا الوسيلة والفضيلة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: लाइफ इजी कब लगती है? यू नो, एक टाइम था एक छोटा सा गवर्नमेंट का काम करने के लिए आधा दिन चला जाता था, फॉर्म्स, फोटोकॉपीज, लंबी लंबी लाइन और पेशेंस। लेकिन टेक्नोलॉजी ने एक बहुत अच्छी चीज की है, उस टाइम को बचाना शुरू कर दिया। यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल ओवर 106.3 FM, मैं हूं मुस्कान और शो का नाम यस ऑफ कोर्स हैप्पी वेगन्स। और कतर भी इसी डायरेक्शन में काफी फास्ट मूव कर रहा है। अब मीट्रश ऐप के साथ कतर वीजा जो सेंटर है उसके मेडिकल एग्जामिनेशन फीस भी आप पे कर सकते हो, और ज़रूरी नहीं है अगर आपको ज़रूरत हो तो मेडिकल फ़ीस एक वीज़ा से दूसरे वीज़ा में ट्रांसफ़र भी की जा सकती है। ये सिर्फ एक फीचर नहीं है, बेसिकली एक थॉट है कि टेक्नोलॉजी तब सक्सेसफुल होती है जब वो इंसान का वक्त बचाए। वैसे हम सबके पास एक ऐप होती है जिसके बिना हमारा काम नहीं चलता। किसी के लिए वो व्हाट्सएप है, किसी के लिए वो गूगल मैप्स है, किसी के लिए कोई बैंकिंग ऐप है। सो ऐसे ही हर किसी की लाइफ में एक ऐप होती है। सो आई वॉज आस्किंग वन क्वेश्चन अपने सारे आसपास लोगों से कि भाई आप अगर एक ऐप डिलीट कर सकते हैं तो कौन सी करते। भाई सब ने बोला कि वो सोशल मीडिया डिलीट कर सकते हैं, कोई शॉपिंग की ऐप डिलीट कर सकते हैं। अब आप सोचिए हम इनके बिना रह सकते हैं, पर हम इन्हें अपने साथ रखना चाहते हैं। अगर आप सिर्फ एक ऐप चूज कर सकते हैं तो वो कौन सी होती? मैसेज करिए, बताइए मुझे 3311063 पर योर फेवरेट ऐप जिसके बिना आप नहीं रह सकते, और एक ऐसी ऐप जो आप अपने फोन से अभी डिलीट कर सकते हो। दोनों बता दो। सुन रहे हैं आप रेडियो ऑलिव, स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास।

0: हैप्पीनेस बांटोगे तभी तो बढ़ेगी,
1: क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास।
2: सोचो अगर सेविंग से आप बन जाओ मिलियनेयर, कमर्शियल बैंक के सेव एंड विन कैंपेन में भाग लीजिए।
3: हर 10,000 कतरी रियाल सेविंग ग्रोथ पे मिलेगा एक कूपन, या सिर्फ 50% सैलरी सेव करो एंड एंटर द ड्रॉ।
2: न्यू कस्टमर हो तो अकाउंट खोलो और फर्स्ट सैलरी ट्रांसफर पे गारंटीड चांस टू विन,
3: और 9 महीने की कंसिस्टेंट सैलरी ट्रांसफर के साथ मेगा ड्रॉ में एंट्री पक्की।
2: तो फिर सोचना क्या, अगले मिलियनेयर आप हो सकते हो। आज ही शुरू करो सेविंग्स, कमर्शियल बैंक, सेव एंड विन।
4: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर।
5: क्या बात है सर, क्या पर ये बात है।
6: कूल सॉन्ग।

सो हर खेल को ना एक मौका चाहिए होता है। अगर मैं 10 साल पहले आपसे पूछती पैडल क्या होता है तो शायद बहुत कम लोग आंसर दे पाते, और आज पैडल दुनिया के फास्टेस्ट ग्रोइंग स्पोर्ट्स में से एक बन चुका है। और इसलिए जर्नी का एक और प्राउड चैप्टर जो है वो ऑफिशियली लेकर आ रहा है कतर। कतर ने ऑफिशियली होस्ट किया है कि FIP पैडल वर्ल्ड कप 2026 और 2028 जो है वो खलीफा इंटरनेशनल टेनिस एंड स्क्वैश कॉम्प्लेक्स एक बार फिर से दुनिया का बेस्ट प्लेयर्स का वेलकम करेगा। यू आर लिस्निंग रेडियो ऑल ओवर 106.3 FM, मैं हूं मुस्कान और शो का नाम यस ऑफ कोर्स हैप्पी वीकेंड्स। कोई भी गेम छोटा या बड़ा तो होता नहीं है, उसे बड़ा बनाना पड़ता है, उसके प्लेयर्स, उसके फैंस और उससे सपोर्ट करने वाले लोग। इसीलिए कतर आज सिर्फ फुटबॉल नहीं, टेनिस, पैडल, एथलेटिक्स सब में नंबर वन है। हर स्पोर्ट का ग्लोबल डेस्टिनेशन बनता जा रहा है। और आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू कि अगर आपको किसी एक खेल को प्रोफेशनली सीखने का मौका मिले अभी भी, तो आप कौन सा सीखेंगे? फुटबॉल, टेनिस, स्विमिंग या फिर कोई और? बताइए मुझे 3311063 पर। बाय द वे, अगर मेरे को ऐसा मौका मिलेगा तो मैं स्विमिंग सीखना चाहूंगी, मैं सीख ही नहीं पा रही हूँ। सुन रहे हैं आप रेडियो ऑल, स्टे ट्यून्ड, जियो।

सो आपका जो वीकेंड है वो कब इंटरेस्टिंग और सक्सेसफुल माना जाता है? एक सवाल पूछती हूँ. यू आर लिस्निंग रेडियो ऑलिव 106.3 FM. मैं हूँ मुस्कान और शो का नाम है हैप्पी वीकेंड्स. सो वीकेंड सक्सेसफुल कब होते हैं? जब आप 10 जगह घूम लो, या फिर जब फ्राइडे नाइट को ये लगे कि यार दिल खुश हो गया. मुझे लगता है कि वीकेंड एक्सपेंसिव नहीं होना चाहिए, पीसफुल होना चाहिए. किसी के लिए फैमिली लंच ही परफेक्ट वीकेंड हो जाता है, किसी के लिए बस एक लॉन्ग ड्राइव ही वीकेंड है, और किसी के लिए फुटबॉल का मैच घर पे बैठ के देखना, और कुछ लोगों के लिए ब्लैंकेट, एसी और बढ़िया सा यू नो नेटफ्लिक्स पे कोई मूवी लगाना और दिन भर खूब सारी बातें करना. वैसे मुझे ऐसा लगता है कि कतर में यूजुअली लोग सबसे पहले अपनी ग्रॉसरी सॉर्ट आउट करते हैं, जितने भी वर्किंग लोग हैं, जितना मैंने देखा है अभी तक. यू नो एवरी थर्सडे एंड फ्राइडे दे सॉर्ट आउट एवरीथिंग, पूरे हफ्ते के लिए सारी चीज़ें करना, खुद दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करना. और इवन हम वीकेंड में सबसे ज़्यादा खुश तब होते हैं जब हम अपनी मर्जी से टाइम स्पेंड करते हैं, चाहे कुछ करें चाहे कुछ ना करें. पर आप अभी तक मतलब अगर प्लान नहीं बना पाए हो, फ्राइडे इज ऑलमोस्ट ओवर, तो टेंशन मत लो, कभी कभी बेस्ट वीकेंड नहीं होता. सो आप मुझे बताओ, टीम रोड ट्रिप में आप आते हो, टीम नेटफ्लिक्स में आते हो, या टीम फूडी में, या फिर टीम स्लीप में, वीकेंड पर कौन सी टीम में आप होते हो? यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव, नंबर है 3311063. वी विल टॉक अबाउट OTT पिक्स ऑल्सो फॉर दिस वीकेंड. सुन रहे हैं आप रेडियो ऑलिव, स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास.

0: हैप्पीनेस फ्री में बट रही है, जितनी चाहो उतनी बटोर लो, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास।
1: इस वेकेशन प्यार से हमारा इंतजार करने वाले अपनों को एक गोल्डन सरप्राइज क्यों ना दे। मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स के गोल्डन समर ऑफर के साथ डायमंड एंड प्रेशियस जेम ज्वेलरी खरीदने पर पाइए फ्री कैश वाउचर्स। अपने पुरानी गोल्ड ज्वेलरी को एक्सचेंज कीजिए विदाउट एनी लॉस। और अब विद द इंपोर्ट ड्यूटी रिविजन इन इंडिया, यू कैन नाउ सेव अप टू 15% ऑन गोल्ड प्राइसेस हियर इन जीसीसी। विजिट मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स टुडे।
2: अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है।

बाय द वे मैंने इस हफ्ते में वीकेंड का वेट नहीं किया, आई वॉच्ड 2-3 वेब सीरीज, वो भी मैंने बिंज वॉच किए हैं, बहुत छोटी छोटी थी, 6-6 एपिसोड, बहुत मजा आया। प्रीतम एंड पेड्रोस में से एक थी जो मुझे देखकर बहुत मजा आया, जिसमें हम पेरेंटिंग सीखते हैं, जिसमें हम यू नो टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़ना सीखते हैं, जिसमें हम अपने दिमाग में कई सारे सवाल सीखते हैं। सो आई विल से कि मैं तो वीकेंड का वेट नहीं करती टू वॉच समथिंग। और इसी के साथ नेटफ्लिक्स पर आया है इस टाइम पर लॉकअप, भाई उसमें इतने सारे लोग हैं जैसे हम सब जानते हैं, कुछ सेलिब्रिटीज़ हैं, कुछ इन्फ्लुएंसर्स हैं, और वीकेंड और ओटीटी का जो रिश्ता होता है ना वो बिल्कुल चाय और पकौड़े जैसा होता है। एक दिन भी बिना दूसरे के हम नहीं रह सकते, मतलब एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। प्रॉब्लम चूज़ करनी होती है तो चलिए, आज मूड के हिसाब से कुछ रिकमेंडेशन चाहिए तो चलिए, अगर पूरे हफ्ते ऑफिस ने बहुत ज़्यादा थका दिया है तो भी आपको कॉमेडी वहाँ पर मिल जाएगी। और इसी के साथ अगर सस्पेंस पसंद है तो एक अच्छा थ्रिलर निकाल लीजिए, मतलब हर चीज़ आपको नेटफ्लिक्स, जियो हॉटस्टार या फिर Z5 ग्लोबल पे मिल जाती है। एंड आई वॉज वंडरिंग कि भाई ये सब ना होते तो क्या होता, मतलब सोचिए जब ये नहीं थे तब लाइफ में यू नो क्या था। पर मुझे ऐसा लगता है कि हर चीज़ के बाद उसके फ़ायदे और नुकसान हैं। अब मैं बहुत ज़्यादा मूवीज़ देखने लग गई हूँ। सो आपकी ऑल टाइम कम्फर्ट मूवी जो है वो कौन सी है जिसे आप 10 बार देखकर भी बोर नहीं होते? पर मेरे साथ ऐसा नहीं है, मैं अगर एक बार कोई मूवी देख लेती हूँ ना तो मुझे दोबारा देखने का मन नहीं करता, चाहे वो कितनी भी कल्ट क्लासिक क्यों ना हो। 3311106 इज़ माई नंबर, यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव, स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास।

0: आपकी एक छोटी सी मुस्कुराहट किसी का दिन बना सकती है. सो स्प्रेड दी हैप्पीनेस, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस. रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी. जियो बिंदास.
1: Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.

सो भाई फोन नंबर या आइडेंटिटी, एक टाइम था हम स्कूल में दोस्त का लैंडलाइन नंबर याद रखते थे, फिर मोबाइल आ गया, याद रहना बंद हो गया। और आज सच बताइए कितने लोगों को नंबर याद है, शायद किसी को भी नहीं या बाय द चांस किसी को। सो टेक्नोलॉजी इतनी फास्ट बदल रही है और अब व्हाट्सएप भी यूज़र नेम लाने की तैयारी में था, जिसमें पहले ही कह दिया कि भाई अपना जो यूज़र नेम है वो बुक कर लो, पर लोगों ने झूठे झूठे यूज़र नेम बुक कर लिए। जैसे मैंने अपना नाम रख लिया सुष्मिता सेन, अब भाई सुष्मिता सेन क्या करे। ये प्रॉब्लम इंडिया में आई और बात में मतलब व्हाट्सएप को समझ आया कि ये तो मतलब आइडिया चला ही नहीं यहाँ पे। यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल ओवर 106.3 FM, मैं हूँ मुस्कान और शो का नाम है हैप्पी वीकेंड्स। सो यहाँ पर प्राइवेसी भी बढ़ेगी ऐसा कहा गया था, कन्वीनियंस भी होगा, लेकिन मुझे एक और बात इंटरेस्टिंग लगती है कि हम डिजिटल दुनिया में यूज़र नेम चूज़ करने में इतना टाइम लगा देते हैं। काश रियल लाइफ में भी लोगों को अपनी असली पहचान बताने में उतनी ही मेहनत करते होते, क्योंकि यूज़र नेम चेंज हो सकता है भाई, कैरेक्टर चेंज नहीं हो सकता। सो अगर आपको एक यूनिक व्हाट्सएप यूज़र नेम चूज़ करना हो तो किस नाम से आप अपना नाम बनाएंगे, क्रिएटिव आंसर भेजिएगा। मैं देखना चाहती हूँ कि रेडियो ऑलिव के लिसनर्स कितने क्रिएटिव हैं। 3311063 is my number. You are listening Radio Olive. Stay tuned. Jio. Bindas.

0: खुद के कंधे पर हाथ रखकर कहा है कि क्या काम किया छोड़े तूने जनाब, खुद से हैप्पी रहोगे तभी तो हैप्पीनेस फैलाओगे, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास।
1: कमर्शियल बैंक प्रेजेंट्स सीबी 2026 मिलियन रियाल्स ड्रीम।
2: अब सिर्फ सेविंग्स नहीं, सपने ग्रो होंगे। जीतिए पूरे 5 मिलियन रियाल्स कैश प्राइजेस।
1: जीतने के चार रास्ते। पहला, अपना अकाउंट बैलेंस बढ़ाइए, हर 10,000 रियाल्स ग्रोथ पर पाइए एक कूपन।
2: दूसरा, अगर सैलरी 4,000 प्लस है या 50% सेव किया है तो आप एलिजिबल है।
1: तीसरा, नए कस्टमर्स को पहली सैलरी या 10,000 फंडिंग पर गारंटीड कूपन। और चौथा, 9 महीने रेगुलर सैलरी पर पाइए एक एक्स्ट्रा कूपन और मेगा ड्रॉ टिकट।

0: सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM। गानों के साथ या हैप्पीनेस बढ़ रही है क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी जियो बिंदास। इस खेल में प्लेयर प्लेयर नहीं वॉरियर कहलाते हैं। यहां हर गोल पे एड्रेनलिन रश हाई होता है। यहाँ हर चोट एक मेडल है। हारना मना है और डरना गुनाह है। यहाँ सेलिब्रेशन के लिए ढोल नहीं, दिलों की धड़कन शोर करती है। और ऑडियंस चीयर नहीं, रोर करती है। बिकॉज इट्स नॉट जस्ट अ गेम, इट्स एन इमोशन। FIFA की हर डिटेल के लिए सुनिए रेडियो ओलिव
1: इन एसोसिएशन विद।
0: डाउनलोड द सिटी एक्सचेंज मोबाइल ऐप नाउ टू सेंड मनी क्विकली एट द बेस्ट एक्सचेंज रेट्स।
2: ऑल्सो पाम स्विस गोल्ड बार्स आर नाउ अवेलेबल एट द बेस्ट प्राइस एट सिटी एक्सचेंज।
0: योर ट्रस्टेड रेमिटेंस पार्टनर। यू आर लिसनिंग टू Radio Olive 106.3 FM।

कुछ मूवीज ना कभी पुरानी नहीं होती, ऐसा कहा जाता है। आपने नोटिस किया है कि हर इंसान के पास एक कंफर्ट फूड होता है, और बिल्कुल वैसी एक कंफर्ट मूवी भी होती है। मूड खराब है तो वही फिल्म देख लो, स्ट्रेस है तो वही फिल्म देख लो, वीकेंड है तो फिर से वही फिल्म देख लो, कुछ नए दोस्त आए हैं तो वही फिल्म देख लो। ऐसी एक मूवी है अंदाज अपना अपना, कल्ट क्लासिक मूवी है। मैं जब भी अपने दोस्तों से पूछती हूँ, लोग कहते हैं और यही देखते हैं, कुछ बोलते हैं जिंदगी ना मिलेगी दोबारा देखते हैं, कुछ बोलते हैं ये जवानी है दीवानी देखते हैं, कुछ बोलते हैं DDLJ देखते हैं। भाई मतलब कुछ मूवीज ऐसी हैं जो आप बार बार दोस्तों के साथ देखना पसंद करते हो, पर मेरे साथ ये प्रॉब्लम है कि मैं एक ही मूवी को बार बार नहीं देख सकती। मैं ना मतलब मुझे फिर फोन उठाने का मन करता है बीच बीच में। सो वीकेंड ऑलमोस्ट फ्राइडे जो है वो खत्म हो रहा है, सैटरडे स्टार्ट होगा, उससे पहले आप मुझे बताइए कि इस वीकेंड पर आपने कौन सी मूवी जो है वो एक्सप्लोर की है। 3311063 मैं नंबर, बाय द वे मैंने अल्फा नहीं देखी इस बार तो मैं आपको उसके बारे में ज़्यादा कुछ बता नहीं पा रही हूँ, पर अगर आपने देखी है तो आप मुझे बताइए हाउ वॉज इट। सुन रहे हैं आप रेडियो ऑलिव, मैं हूँ मुस्कान, स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास।

0: बैड हैबिट ऑफ माइन इज कि जब भी मैं इंस्टाग्राम या कुछ ऐसा खोलती हूँ सोशल मीडिया, तो मैं घंटों उस पर बैठ जाती हूँ और मुझे समझ ही नहीं आता कि कब ये टाइम यू नो मिनटों से घंटों में चेंज हो जाता है. यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव 106.3 FM. मैं हूँ मुस्कान और ये है हैप्पी वीकेंड्स. सो आज अब अगला सवाल मैं आपसे पूछती हूँ कि यार हम कब बड़े हो गए पता ही नहीं चला. यू नो आखिरी बार आपने सिर्फ शौक के लिए कब कुछ किया था, मतलब ना ऑफिस ना कोई पैसे, बस दिल के लिए. बचपन में कितनी हॉबीज होती थी यार, मतलब पेंटिंग करना मुझे बहुत पसंद था, कलर्स के साथ खेलना, ड्राइंग करना, यू नो डांस करना, सिंगिंग करना, साइकिलिंग करना. और फिर धीरे धीरे स्कूल से कॉलेज, कॉलेज से जॉब, जॉब से रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, और पता ही नहीं चला कि हॉबीज़ कैलेंडर से गायब हो गई. आज मतलब मैं हर टाइम कैलकुलेशन करती हूँ कि भाई ये सैलरी आएगी, मुझे अपना ये पार्ट जो है इतना सेव करना है, इतने पार्ट से यू नो आई हैव टू शॉप. और स्ट्रेस कम करने की कोशिश में मैं अपना स्ट्रेस और बढ़ा लेती हूँ. सो बेसिकली क्रिएटिविटी बढ़ती है, स्ट्रेस कम होता है जब आप अपनी हॉबीज़ के साथ टाइम स्पेंड करते हो. और इंसानों को ना इमोशनली रिचार्ज करती हैं उनकी हॉबीज़. सो आई विल से कि एक पुराना कोई हॉबी वापस उठाइए. हो सकता है कि आपको डांसिंग पसंद हो सकता है कि आपको दोस्तों के साथ बैठ के चाय पीना पसंद हो, तो कुछ भी हो सकता है यार. सो आपके बचपन का कोई फेवरेट हॉबी, चाहे वो पेंटिंग है, रीडिंग है, फोटोग्राफी है, या फिर गली का क्रिकेट ही क्यों ना है, आप उसे थोड़ा सा टाइम दीजिए, खेलिए और बताइए मुझे कि कौन सी ऐसी हॉबी है जो आपको वापस बचपन में लेकर चली जाती है. 3311106 में नंबर. यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव. स्टे ट्यून. जियो बिंदास.
1: आप सुन रहे हैं रेडियो ऑलिव 106.3 FM. जियो बिंदास.

0: हैप्पीनेस फ्री में बट रही है, जितनी चाहो उतनी बटोर लो, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास।
1: Fresh fish on the grill, slow cooked mandi, perfectly spiced prawns, and that special chutney. No noise, no drama, just seafood done right. BBQ fish, crabs, prawns, crafted with patience, served with pride. Danadal Bahar, the ultimate Katri adventure. Souq Waqif, Alkhol.

सो एक अजीब सी बात है, स्ट्रेस हो, मूड ऑफ हो या घर की याद आ रही हो, हर इंसान को एक स्पेसिफिक खाना याद आता है। किसी को माँ के हाथ की दाल चावल, किसी को राजमा चावल, किसी को बिरयानी, और कुछ लोगों के लिए सिर्फ एक गर्म कप चाय ही काफ़ी होती है अपना मूड ठीक करने के लिए। सो बेसिकली साइंटिस्ट कहते हैं कि कंफर्ट फूड ना सिर्फ पेट नहीं भरता, मेमोरीज भी सर्व करता है। अभी एक दो दिन पहले मैं आपको एक स्टोरी बता रही थी कि भाई स्पेस में पिज़्ज़ा पहुंचाया गया था एस्ट्रोनॉट्स के द्वारा। सो हम अपना फेवरेट फूड ना कहीं भी लेके जा सकते हैं, चाहे वो रेगिस्तान हो, चाहे बीचेस हो, चाहे माउंटेन्स हो। और नानी के घर का खाना भी बहुत लोगों को याद रहता है, मैसेजेस आए थे। सो फूड की सबसे खूबसूरत बात यह है कि ये सिर्फ टेस्ट नहीं बल्कि इमोशन के साथ होता है। तो आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू कि ऐसा कौन सा खाना है जो आपको इंस्टेंटली घर की याद दिला देता है? नाम जरूर बताइएगा, हो सकता है कि किसी और को भी अपना बचपन याद आ जाए। 3311063 is my number. You are listening Radio Olive. Stay tuned. Jio Bindas.

कि एक छोटी सी मुस्कुराहट किसी का दिन बना सकती है. सो स्प्रेड द हैप्पीनेस, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस. रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी. जियो बिंदास.

आपको पता है एक सिर्फ एक स्माइल की पावर क्या होती है? आज एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, बस एक छोटी सी स्माइल दीजिए। हाँ, अभी फनी लग रहा होगा ना, लेकिन इंटरेस्टिंग रिसर्च ये कहती है कि जब हम स्माइल करते हैं तो चाहे हल्की सी क्यों ना हो, हमारा जो ब्रेन है उसको सिग्नल मिलता है कि सब ठीक है, और इसी वजह से मूड भी ठीक और बेटर फील करता है। अब आप एक बार करके देखो, पहले थोड़ा सा मुस्कुराओ। और एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि स्माइल जो है वो कॉन्टेजियस होती है, मतलब सामने वाला स्माइल करे तो चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं कि आप भी स्माइल करेंगे, मतलब कोई आपकी स्माइल को इग्नोर थोड़ी करेगा। शायद इसीलिए कुछ लोग रूम में आते ही एटमॉस्फेयर लाइट कर देते हैं, क्योंकि वो मुस्कुराते हुए आते हैं, उनके पास कोई मैजिक नहीं होता, बस पॉजिटिविटी होती है। सो आज अगर आप मेट्रो में ट्रैवल कर रहे हो या कहीं से कहीं पे भी जा रहे हो, तो बस मुस्कुराते हुए जाइए। लिफ्ट में सिक्योरिटी गार्ड को, कैशियर को या किसी स्ट्रेंजर को एक स्माइल जरूर दीजिए, हो सकता है आप उनका दिन बेटर कर दो। और आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू कि आज किसी इंसान ने आपको सबसे ज्यादा स्माइल कराया है तो वो कौन है? नाम बताइएगा, थोड़ा पॉजिटिविटी भी शेयर करते हैं यार एक दूसरे के साथ। यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल ऑफ, मैं हूँ मुस्कान और ये है हैप्पी वीकेंड।

0: कभी खुद के कंधे पर हाथ रखकर कहा है कि क्या काम किया छोटे तूने? जनाब, खुद से हैप्पी रहोगे तभी तो हैप्पीनेस फैलाओगे, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास।
1: इस खेल में प्लेयर प्लेयर नहीं, वॉरियर कहलाते हैं। यहाँ हर गोल पे एड्रेनलिन रश हाई होता है। यहाँ हर चोट एक मेडल है। हारना मना है और डरना गुनाह है। यहाँ सेलिब्रेशन के लिए ढोल नहीं, दिलों की धड़कन शोर करती है। और ऑडियंस चीयर नहीं, रोर करती है। बिकॉज इट्स नॉट जस्ट अ गेम, इट्स एन इमोशन। फीफा की हर डिटेल के लिए सुनिए रेडियो ऑलिव
2: इन एसोसिएशन विद।
1: डाउनलोड द सिटी एक्सचेंज मोबाइल ऐप नाउ टू सेंड मनी क्विकली एट द बेस्ट एक्सचेंज रेट्स।
3: ऑल्सो पाम स्विस गोल्ड बार्स आर नाउ अवेलेबल एट द बेस्ट प्राइस एट सिटी एक्सचेंज,
1: योर ट्रस्टेड रेमिटेंस पार्टनर। Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.
4: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर।
5: क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है कूल सॉन्ग।

गानों के साथ या हैप्पीनेस बट रही है, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास। गाय के साथ सीएनजी हो या फ्यूल टाइप बसेस, 64 सीटर या कॉम्पैक्ट 26 सीटर, पाइए बेहतर माइलेज और मैक्सिमम कंफर्ट। कारमेल ग्रुप के साथ अब सफर विदाउट सफर। विजिट कारमेल ग्रुप नाउ। अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है।

0: सो वीकेंड को महसूस कीजिए। और दोस्तों, हैप्पी वीकेंड का आज का सफर यहीं तक था। फ्राइडे ऑलमोस्ट खत्म होने को है, लेकिन अभी भी डिनर का टाइम बाकी है। यू आर लिस्टिंग रेडियो ऑल 106.3 FM, मैं हूँ मुस्कान और शो का नाम है हैप्पी वीकेंड्स। तो मेरे यहाँ से जाने के बाद मैं एक अच्छी सी जगह पर डिनर करने वाली हूँ। जाने से पहले एक छोटी सी बात अगर मैं आपसे कहूँ कि हम अक्सर ना वीकेंड के लिए पूरा हफ्ता इंतजार करते हैं, और फिर वीकेंड इतनी जल्दी निकल जाता है कि ऐसा लगता है यार कब संडे वापस आ गया, अब सैटरडे बाकी है। किसी का सैटरडे हाफ डे है, किसी का फुल डे ऑफ है, किसी को सैटरडे को यू नो कुछ घंटों के लिए ऑफिस जाना होता है। और शायद प्रॉब्लम वीकेंड छोटा होने की नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि हम उसे जीते कम है, रिकॉर्ड ज़्यादा करते हैं। सो इस बार फोटो ज़रूर लीजिए, लेकिन बीच बीच में फ़ोन को पॉकेट में रखिए और सनसेट के साथ साथ नाइट टाइम ड्राइव सब कुछ इन्जॉय कीजिए। फैमिली के साथ डिनर पर हंसी मजाक करिए और पूरे यू नो पुराने दोस्तों को कॉल कर लीजिए अगर आपने बहुत टाइम से नहीं किया है। सो आई विल से कि अभी के लिए मुझे कहना होगा कि आप सबको एक बहुत ही खुशियों भरा, सेफ और मेमोरेबल वीकेंड मैं विश करना चाहती हूँ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, सुनते रहिए रेडियो ऑलिव। मैं हूँ मुस्कान, बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे ट्यून्ड।
1: You are listening to Qatar's number one radio station, Radio Olive 106.3 FM, Jio Bindaas.

साल। प्यार दे ये 100 किलो बिना भेदभाव, सुनोगे कहोगे ये लड़की है वाव, तभी तो पूरे शहर की इवनिंग होती है। ओहो।

तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त कतर की नंबर वन आरजे आरजे सिमरन के साथ जबरदस्त इवनिंग रोज शाम 5 से 9 ओनली ऑन 106.3 रेडियो ओलिव जियो।

0: धुरंधर आपके मॉर्निंग को बनाएंगे बिंदास मॉर्निंग। सुनिए आरजे कशिश और सुदेव को हर सुबह 6 से 10 बिंदास मॉर्निंग में ओनली ऑन रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास।
1: It's time to party.

93FM. और दुनिया फिर जापा है, फिक्र ही गम का पापा है, अब ना तो बस ये जापा है, फिक्र करे फिक्र

Dub Olive on Radio Olive. Radio Olive 106.3 FM. You're listening to

0: आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।
1: Ladies and gentlemen,
2: let me tell you the story of Mr. Sutro. 1, 2, 3.

Listening to Radio Olive 106.3 FM. अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है।

listening to Radio Olive 106.3 FM. Geo Bindas.